0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुलेर जियो
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजे बजे चाकुती रेडियो ये बरी तो भाई मुझे भेजो रेडियो रे रेडियो मर्चेंगरी तमु केरी समाचार खल खाई बो
1: हम दिने गम ये बस जुमले हम ये झालो से भेजो
0: बर्थाली दे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्वे केन्द्रीय सदस्य रे लगजुम द कहले आरक्षण कोटर बे केन्द्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी प्लूले जाना नेता मन
2: के मैं रेडियो मर्चेंगरी द कहले दिन नई नानर बे 8 बजे खबर तमु के समाचार ये बरी आमलेत ओ

अच्छा जलो रेडियो मर्संगी 95 MHz तेरे इंटरनेट ऑनलाइन रेडियो मर्संगी .org नाना 8 बजे खबर तमु के मर्संगी फेतेरी खुशमाए तमु शोला तेवा मो ऐसे क्लार्ड फेते

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ऐन अवसर रिभेस्टारेर सुन्दर बजार मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम बेस्टारे किशोर किशोरी लचितलाई मध्ये 100 रूपये दिन भएलागि करियर काउन्सिलिङ दिएर गोल सेटिङ सम्बन्धी विपक्षी छ। भोटीकोशी एयरवे भलदकिया प्रभावित परिवार महिन राहत उद्धारै लागि लम्जुङदोक वाणिज्य संघलाई 1,70,000 बढ़ी सहयोग। देश देशकाली नेतृत्व मिट ग्रुप फाउण्डेशन जी भोटीकोशी भलदकिया प्रभावित भए 110 जना कोलमामै लागि कक्षा 12 सम्म खेबै लागि सहयोग। नानर खबर तमुकी मसंग दी फेटे तो खबर लागे छिजी प्राविधिक थू दीपेश दे धन्यवाद पीमारी फेटे कर सके आंगा खुशी माया तमुशो विदा कीमो रेडियो मसंग दी 95 MHz देर इंटरनेट ऑनलाइन रेडियो मसंग दी .org ये दिन दिलाद ओ छा जलो।

0: Under fridge, induction chulu, rice cooker, wall clock, and bumper price of pound hoos, ek jodi ko lagi Bali tour, Euro paints, ghar matra hoina, rangaun hoos, sapna pani.
1: Mahalekha parikshak ko karyalaya ko anurodh. महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय में लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाव पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-10-50-00-61 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: নমস্কার, রেডিও মর্সাংদি 95 মেগাহর্স র ইন্টারনেট অনলাইন রেডিও মর্সাংদি .org মা বিহানা 10 বাজে কো মর্সাংদি সমাচার মা মলক্ষ্মী কো স্বাগত ছ। প্রসারণ কো শুরু মা মুখ্য মুখ্য সমাচার কা শীর্ষক হরু।
1: मुख्य समाचारका प्रायोजक
2: आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउन, खरिद बिक्री गर्न तथा राशि अनुसारका एवं अन्य पठरहरूका लागि जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर साथ लमजुङ प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा।
0: आज कुशे औंसी मिथिला क्षेत्रमा आज कुश अम्बसीय पर्व मनाइँदै, आज 161 औं मोती जयन्ती मनाइँदै, भोटेकोशी बाढ़ीबाट 15 पालिकाका 16,000 भन्दा बढ़ी घरधुरी प्रभावित र एनभीएलको फाइनल प्रवेशका लागि आज काठमाण्डु र कर्णाली खेल्दै।
3: विगत 12 वर्षदेखि लमजुङ मोडेल हस्पिटल मार्फत हजुरहरूमा सेवारत पुरानै सञ्चालकद्वारा अब नयाँ व्यवस्थापन अनि अत्याधुनिक रंगीन भिडियो एक्सरे सँगै 500 MA को अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे अनि अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरहरू एवं नयाँ युवा जोश जाँगर सहित हरपल अत्याधुनिक प्रविधि र विज्ञान सँग अपडेट डाक्टरहरूद्वारा 24 घण्टा हजुरहरूको सेवामा मोडेल सिटी हस्पिटल बेस्टर 7 लमजुङ पुरानो लमजुङ मोडेल हस्पिटल भएकै ठाउँबाट निरन्तर सेवामा रहेको जानकारी गराउँदछौ। हाम्रो कुनै शाखा छैन, हामी कतै ठाउँ सरेको छैन। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, प्रसूति सेवा, फार्मेसी सेवा, प्रयोगशाला, रगत दिशा पिसाब जाँच, सुरक्षित गर्भपतन परामर्श सेवा, बिरामी भर्ना एम्बुलेन्स सेवा, गंगालाल हस्पिटलका अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा मुटुको इको जाँच, ईसीजी, इन्सुलिन सुई, रेबिज भ्याक्सिन, हेपाटाइटिस खोप, अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे तथा प्लास्टर राख्ने र झिक्ने, अक्सिजन सेवा, नेबुलाइजेसन।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी